0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

गुड न्यूज एफएम 105.1 मेगाहर्ज। अब प्रस्तुत हुँदैछ कार्यक्रम रोचक जानकारी, प्रस्तुता कुमार अब्राहमको साथमा।

0: हाम्रो आफ्नै नेपाली भाषामा सुन्नुभयो रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ। मेरो विश्वासमा चमक ल्याउनुहोस्। कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39। हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
1: आजी नेना दिगु दु निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। छिगु जीवन्या नीति परमेश्वर के विशेष वासदु जय मसी जुजल बाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ यु जीवन्या छेन श्रृंखला के सकसितन लसकु छ। जी थुगु हलिमले बुई बोले परमेश्वर झीगु नीति छगु योजना व उद्देश्य दुगु ख अले वेकल झी त थगु सम्पत्ति धका दाबी या त उखी झिस वया क्या वसा पुवङ्के फै उखी झिस वेगया वास पुवङ्के फै एफिसी छगु अध्याय झिन छगु पत्य धाया तगुदु परमेश्वर थु फुक्क नापा हे पोछिना त कथ याना दिगु ख वेकल झी त नापा निशे हे ख्रिस नाप मिले याना थ मनु त याना दिगु लेया दिगु दु ख्रिस्टेन या रूपे जी ज्या धैगु जीवन या थगु हे योजना देखेगु मखो जी मा अबु जी त अले जी मा अबु झिगु नीति देखुगु योजना पालन याएगु न झिगु ज्या मखो बरु थो परमेश्वर या निहने थ थम सोजा जुइगु ख अले झिगु नीति वेक या वास या त पालना याइगु ख निगु तिमोथी छगु अध्याय गुगु पद के धा त गुदु थोहे परमेश्वर झी त बसे याना वेकया मनु त याए त सता दिल झिस यानगु धर्म कर्म याना मखु बरु वेकल हे दया माया याना झी त बसे याना दिगु ख सृष्टि जुइ हे कृष्ण झी त थो दया माया या बिया दिगु ख छिमी माया पातले दुबले परमेश्वर छिमी त पवित्र व शक्तिशाली बोलावट यु लागि सदा दिगु ख छिगु जीवनया नीति वयागु उद्देश्य छि व छिमी मा अभु कल्पना याए फैगु सयान तद एसा झिस छिगु जीवने या नीति याएगु स्वतन्त्र इच्छा निर्णय या त परमेश्वर गुब्लेन तो ठुली मुखु परमेश्वर या ग्वासा या अनुभव याए त झिस झिगु नीति वैक या ग्वासा या त पालना याए त झिगु हे ग्वासा तोतेमा मत्ती झिगु अध्यायु सुई नेगु सुई च्यागु पत्के धाट बुदु जित स्वया थ मा अभुइ त अप्प माया याइपी मनु झिगु ल्यु ल्यु वे फैमुखो अथे थ क्या म्यापिन त जित स्वया अप्प माया याइ म मनु न झिगु ल्यु ल्यु वे फैमुखो थगु क्रुस कुबिया झिगु ल्यु ल्यु वै म मनु जी म चेला जुई फै बाइबले धया त गुदो झिस झिगु मा अबु या त सम्मान यायमा धका जीवने दकले त धङ्गु जिम्मेवारी मा अबु या सेवा यायगु सोया न नाप्ला क परमेश्वर या सेवा यायमा छि स्वर्ग सोयादि बले छिमे मा अबु न अन गोगु नुग व ग्रह तया बिल छि अक्सिजन सास लाए बले छिगु नीति ग्रह देखुपी छिमे मा अबु थुगु अक्सिजन बिगु खला गुब्लेन छिमे मा अबु छि नसा नेगु टेबुले छुना नैगु झोले छु छित फलफुल या सीमा वा तरकारी भुइके फैगु पुसा तक्क बिहादिगु खला झिगु जीवने मा अबु या भूमिका फरक जुइ अले थुगु जीवने झिस झी सृष्टिकर्ता या वास पालना याइगु पुछिमा भजन सचिव सुई गुगु अध्यायु झिन्सोगु झिन्पेगु पत्के धाट गुदु छि जिगु मया छता छता बो देखा दिल छि जित जिमी माया पछे हे बल लाका दिल छि जिगु भजन सचिगु सुई गुगु अध्यायु झिन्सोगु झिन्पेगु पत्के धाट गुदु छि जिगु माया छता वो देखा दिल छि जिम त जिमी माया पछे हे बलाका दिल जी छि त सुभावी छादासा छि जित अजु चाहे पुगु देखा दिगुदु छिगु ज्या त तस्कहे अजुजाइपु थोक।